0: लोकलिंगित,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जावनसाथ प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।